और विश्व की समृद्धि में नई चमक जोड़ेगा। आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है।